0: इकाई पनौती स्थान पनौती बेनकोइट पनौती उप इकाई कुसादेवी माध्यमिक
1: असोज 11 गते आइतबार समय बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म
0: इकाई पनौती स्थान पनौती बेनकोइट पनौती उप इकाई कुसादेवी माध्यमिक
1: असोज 11 गते आइतबार समय बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म
0: इकाई पनौती स्थान पनौती बेनकोइट पनौती उप इकाई कुसादेवी माध्यमिक
1: असोज 11 गते आइतबार समय बिहान 7:30 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म